चेत आवे, चेत आवन का सदका सर्व सुख होवे। काल से जी की देख देख फतह चौकी आटंडे भुगे जुगो जुग अटल रहे। धर्म का जयकार खालसा दी सावे बोला रे। खालसे दिनो नाम दान सखी दान गुरमत दान बुद्ध विवेक रहत रक्षा दान। खालसे दिनो श्री हरिमंदर साहिब अमृत सार सरोवर दी दे स्नान। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार मेले बुलाए। श्री अकाल तख्त साहिब जी बाबा अटल जी संतोख सर जी विवेक सर जी राम सर जी काल सर जी।

जी गुरु गरीब निवार यंत्र जामी सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी दे पावन स्थान तखत सचखंड श्री हजूर अब जलंधर साहिब विखे पावन स्थान दियां हाजरियां भरदे गुरु कीआं संगतां वल्लों गुरबाणी दे शब्द कीर्तन सत्कार वजों बेअंत माया अरदास कराई पातशाह सतगुरु आप नाम जन सतगुरु जी कृपा करनी रहमत बख्श करनी देर उपदा दे नाम दे दात कारज

काहे रे मंचत वह उदम जा आहिर हर जियो परिया। सैल पत्थर मह जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरिया। मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ। जन पिता लोक सतबंता कोई न किसकी धरिया। सिर सिर रजक संबाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया। ऊडे ऊढ़ आवै सह कूसा तिस पाछै बचरे छरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया।

तुद जी हर अनक अनेक अनंता, तेरी अनक करै हर पूजा जी, तब तापह जपह बेनता, तेरे अनेक पड़ै बहु सिमृत सास्त जी, कर क्रिया खट कर्म करनता, से भगत भले जन नानक जी, जो भावे मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जीव डियावर ना कोई, तू जग जग एको सदा सदा तू एको जी, तू नह चल करता सोई, तुद आपे भावे सोई वरते जी, तू आपे करह सोई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जानोई, आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैंडा साई, जो तौ भावे सोई थी सी, जो तू दहे सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सब नी ध्याया, जिसनु कृपा करहै तन नाम रतन पाया, गुरमुख लाधा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनू तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिंदु जा अवर ना कोए, तू कर कर वेखह जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरडै भैले निवासा, पाणी पावक तिन है किया, पंक जो मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेत समूड़, मना हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हाँ जती सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुकदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे कतै नकाम, मल साध संगत भज केवल नाम, शरण जाम लाग भौ जल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाओ, जप तप सं

को कह चौपाई सम सत्र सहस भणी जय अर्ध सहस फुन तीन कहे जय भादव सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चर

आए। अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुना, कब बाच दोहरा ठाड भयो मैं जोर कर बचन कहा सुर न्याय। पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा, जे जे तुमरे ध्यान को नितुड़ ध्यान है संत, अंत लेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा। तिन बेदियन की कुल बिखै प्रगटे नानक राय, सब सिखण को सुख दै जह तह भय सहाय दोहरा। ठीकर फोर दिलीस से

मान्यो। सिमृत शास्त्र भेद सब बाह भेद कह हम एक न जान्यो। श्री अस पान कृपा तुम रिकार मैं ना कहो सब तोहे बखान।

जी सर्वसमूह खालसे जी की अरदास श्री वाहिगुरु जी के पास जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी का मन नीवा मत ऊंची मत पतका राखा आप वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे खालसे जी की देख तेग फते चौकियां झंडे बुंगे जग जग अटल रहे धर्म का जयकार खालसा जी साहब बोलो जी खालसे जी को नाम दान सखी दान गुरमत दान बुद्ध बबेक रहत रिछा दान खालसे जी को श्री हरिमंदर साहिब अमृत सर सरोवर जी के स्नान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दार मिले बोलो जी श्री अकाल तख्त साहिब संतोख सर जी बबेक सर जी राम सर जी कौल सर जी तरन तारन जी तपियाने जी खडूर जी गुरु की बावली श्री गोविंदवाल साहिब जी के स्नान दर्शन दार मिले बोलो जी हम जी ननकाने जी करतारपुर जी बाबे नानक डेहरे जी तख्त केसगढ़ साहिब आनंदपुर जी कीरतपुर जी पातालपुर जी लखनौर जी चमकौर जी फतेहगढ़ साहिब जी दमदमा साहिब जी धमतान जी मुकतसर जी पौंटे जी तख्त पटना साहिब हरमंदर दिल्ली मैं शीशगंज रकाबगंज बाला साहिब बंगला साहिब सत्तो झंडिया साहिबां जी दे सुख दे दर्शन दार मिले बोलो जी भगौड़ साहिब जी पंजे साहिब जी कपाल मोचन जी रणमोचन जी नानक मत्ते जी तिलगंजी जी नानक जीरा जी शिकारघाट जी हीराघाट जी माता साहिब देवा जी संगत साहिब जी माल्टे कड़ी साहिब जी बसमत नगर दमदमा साहिब जी बंदा घाट जी नगीना घाट जी श्री गंगा जी गोदावरी जी के स्नान दर्शन दार मिले बोलो जी सर्व समूह खालसे जी को नगारे निशान साहिबा संजगत तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब जी दे सुख दे दर्शन दार मिले बोलो जी सत श्री अकालपुरख जी का खालसा जी साहब बोलो जी सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहब बोलो जी बोलो जी बोलो बोलो जी श्री वाहिगुरु जी गुरु गरीब नवाज अंतरजामी सचे पातशाह जी महाराज आप जी के दुर अमृतमय शब्द बाणी कीर्तन चौकी सोदर रहरा साहिब जी की अरदास अखर वादा घाटा भूल चुक माफ करना बाणी सच खंड विच प्रवान करना आईया समूह संगतां दी हाजरी प्रवान करना सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होण गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

लिखना शुरू किया। मैं की वेखदा जे ओ अकाल पुरख वाहेगुरु परमेश्वर दे सारे गुण एक जगह एकत्र कर लिए, ओ अकाल पुरख वाहेगुरु परमेश्वर दे सारे गुण एक जगह एकत्र कर लिए तां बनदे ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी। जे उस अकाल पुरख वाहेगुरु परमेश्वर दी सारी अकल एक जगह एकत्र कर लिए तां बनदे ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। जे उस अकाल पुरख वाहेगुरु परमेश्वर दा सारा ज्ञान एक जगह एकत्र कर लिए तां बनदे ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। जे उस अकाल पुरख वाहेगुरु परमेश्वर दी सारी सूझ ते बूझ एक जगह एकत्र कर लिए तां बनदे ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। जे उस अकाल पुरख वाहेगुरु परमेश्वर दी सारी सियाणप एक जगह एकत्र कर लिए तां बनदे ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। कहिंदे गल मुकदी इह गल आखां जिवें आपां सतगुरु जी दे पावन बचन पढ़दे आं, गुण इहो होर नाहीं होए ना को हुआ ना को होए पढ़ लिया।

हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बने भागा वाले होंगे ने जिन्हों सतगुरु जी दे आउण दा

0: महाराज तुहाडे दर्शन दार होए, महाराज तुहाडे मुबारक चरण पए, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, गुरसिखी सो थान भालिया लै धूड़ मुख, गुरसिखां की घाल थाए पई जिन हर नाम ते आवां, जन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा, सिमर सिमर सिमर नाम जीवा, तन मन हुए निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया, नानक को प्रभ पे कृपाला, सतगुर
1: पूरा पाया,
0: पूरा पाया महाराज धन भाग, सोए सुरंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, पंद जलंदड़ी मेरा अंदर ठंड।

परमेश्वर दे हो महाराज फिर कृपा करो दास नूं सेवा का मौका दे घर चरण पाओ महाराज घर आके ठहरो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे राजा हुण नहीं आ सकते जदों परमेश्वर का हुक्म हो गया जरूर आऊंगा महाराज कदों आऊंगे कहिंदे तू अपने घर अपने घर जाके उड़ीकना शुरू कर दे जदों परमेश्वर का हुक्म आ गया असीं उदों ही आ जाणा सतवचन महाराज राजा सिद्ध सैन घर चलिया गया अपने महलों में आके कहन लगा सतगुरु अपनी मौज दे मालक ने की पता कदों उन्होंने मौज आ जानी है ते सतगुरु जी ने आ जाना ये ना होवे सतगुरु आ जाण ते अगों मेरी कोई तैयारी ना होवे राजे सिद्ध सैन ने फिर एक कमरे की सफाई कराई उन्हें चंगी तरह धोता सवारिया उस कमरे के विच धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का सोहना आसन लाया पलंगा बसाया रोज राजे सिद्ध सैन ने अमृत वेले उठना इशनान करना जिस कमरे विच गुरु साहब जी का आसन लाया कहिंदे आसन दे कोल बह जाना चौंकड़ा मार के धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों का ध्यान धरना ते अरदास करनी गरीब नवाज करो कृपा करो मेर दास दे महलां विच चरण पाओ अपने दर्शन दार बख्शो महाराज अपने चरण पाके ना मेला नूं सहावने बना दे रोज अरदास अरदास ते आपां सारी करदे पर ज्यादा अरदास करदे आ ना अरदास करदे समय सतगुरु जी दे भरोसा किन्ना होना चाहिए अरदास करते समय सतगुरु जी ते विश्वास कितना होना चाहिए जदों आप अरदास करते हैं ते सतगुरु जी तो सत फेरा मंगते आप कहने गरीब नवाज कृपा करो सिखां नूं सिखी दा केस दा रहत दा विवेक दा वसाहो दा भरोसा दा दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के पवित्र दर्शन सुना ये सत खैरा जेड़ा गुरसिख है ओ सतगुरु जी तो झोली अट के रोज सत खैरा मंगदा कि महाराज कृपा करो सिखी दा दान बख्शो महाराज किसां दा दान बख्शो महाराज रहत दा दान बख्शो असी रहत विच आ जाईए विवेक दान दा अर्थ हुंदा विवेक बुद्धि महाराज मेरी खोटी मत दूर हो जाए

0: आज मेरे अंदर गुरमत आ जाए। आखो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: महापुरख वचन करते कहते चार तरह की मत होंदी है भाई। एक होंदी है अनमत, एक होंदी है मनमत, एक होंदी है दुरमत, एक होंदी है गुरमत। अनमत वह होंदी है भी एवं वेखा वेखी किसी के मगर लग के तुर पैना भी फलाना फलानी जगह पर जाता है उन्हें उतों दिया दो चार गल्लां सुना दियां ते आपां प्रभावित हो गए एवें उहदे मगर लग के उत्थे चले गए। जिवें ओह दीवे जगाई जांदा उहदे मगर लग के उवें फिर दीवे जगाउणे शुरू कर पए। कोई ओह साध संगत कोई कर्म धर्म करदा उहदे मगर उवें आपां कर्म धर्म करने शुरू करते। कई भरम दे विच ही धर्म पाली जांदे। अनमत होंदी है मैं वेखा वेखी किसी के मगर लग पैना। मनमत वह होंदी है भी अपने मन की मर्जी कर रहे। बहुत बंदे ऐसे भी ने जिहड़े मन की मर्जी करते हैं। जे उन्हां नूं कोई गुरु का उपदेश सुनाओ कहिंदे लै एवें गल्लां बनाईआं एवें मरी जांदे। इत्थे तक उन्हां नूं माण हो जाता हंकार हो जाता रब की होंद तो मनकोर हो जाते कहिंदे रब है ही नहीं। ये मनमत होंदी अपने मन की मर्जी करती मनमत। दुरमत वह होंदी है भी माड़े विचार माड़े ख्याल माड़ी संगत माड़ा खाना माड़ा पीना माड़ी थां ते जाना माड़ा ही सोची जाना ये दुरमत होंदी। गुरमत वह होंदी है गुर कहया साकार कमावो गुर की करनी काहे ताही ते सतगुरु कहिंदे गुर की मत तू लेहे आणे मेरिया मना गुरु की मत ले ला। क्यों कहिंदे गुरु की मत तो बिना भगत बिना वो डूबे जाने। गुरु की मत तो बिना जिथे

चिंता भी दूर कर दी। हुण तेरा चेहरा क्यों उतरिया होया, हुण केड़ी गल्लों उदास है। राजा सिद्ध सैन कहिंदा महाराज पहला ते चिंता सी फिकर सी, हुण गरीब नवाज दुख है। आखो सतनाम हुण महाराज दुख है। सतगुरु कहिंदे लै दुख, दुख केड़ी गल दा गरीब नवाज, मैं सोचदा तुसी इत्थे आए हो ते रौनकां लगियां होईयां ने, तुसी महाराज आए हो बहारां लगियां होईयां ने। गरीब नवाज सेवा सिमरन सत संग, संगतां आउंदियां जांदियां, किन्ना सुहावना समां बणिया होया। गरीब नवाज तुसी चले जाओगे फिर पता नहीं आ समा कदे जिंदगी च बनना के नहीं बनना। को सतना हुण दुख महाराज तुहाडे विछोड़े दा मारदा, दुख विछोड़ा इक दुख भूख, इक दुख सख्त वार जां मदूत, इक दुख रोग लगे तन।

एक उंदा काजल तो उतना भेकाई कार जाल तजियां पुरियां लो आकराकार ओ जाके सोत जन इतना वित्रसार नानक भक्ता पुसान सिजन मादार सदान रे दिन राती गुण त्या।

बावड़ी सतगुरु टवारी आज इतमी लेख कसम संभाले आज इन कर उपदेश ज्ञान इन दिया ने मित्री जगत में हालिया कसम छोड़ दी जले के डूबे से उन जा रिया सतगुरु है पता लेकर बिचारिया